मुझे कुछ होता है, आँखों में आँखें ना डालो मुझे कुछ होता है। आँखों में आँखें ना डालो मुझे कुछ होता है।